ये जहाँ होते हैं एक्सीडेंट, ये जहाँ होते हैं एक्सीडेंट हो ही जाते हैं। मालिक मालिक मालिक मालिक